दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम अब दुरा सुनत मेरी लय मन सनम तेरी कसम प्रिय उब पल्ला दुरा सुई मंदरा गन

सुबह मन दारम रहा तरंगा या मनागे के नकुना ते आमटे आदरणीय आत्मयाक इति मांगे आदरणीय आत्मयाट लिया त्यान्ने ए धवा के मदद मांग आदरी इच्छराई दारणे गलिन चमरी तरंगा रिदिन रिदिन सरेट अंडन मांग महामुते नेवेने इतने अनिन अनिन सरेट रिदिन नैवा गे इन्न मम्मा हालु को काले कुत नेवेने केले केले रिद्दना मटे हितुनात ओ मट हितकुत नैने हे आदरे निसा इरन इरन गान ट महान में हित रिद्द कुत नेवेने नुबाह दिन केले हितरु दाने न कोटा इच्छराय मटोने मटे हितक्ती है ना मन सतुटिंग ने सतुटिंग इन्ना इच्छराय मटोने

चेत और जे कैसे बिना आपके अब नमति वे जीवत में किसे दे किया देन लगता नहीं दिल कहे बिना आपके इते कोहे हरी सन सीमक तिये दहन अब नमति वे जीवत में कहो मदा ए कहो मदा